मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:55 मिनट हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपकी मित्रिला आपके साथ हूँ। सुप्रभात।

0: हिंदी में समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देश गान से।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में आप लीजिए प्रस्तुत है उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में ये भक्ति रचना।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए ओम व्यास की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: शर्मा बंधु के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आलेख श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव का है और वाचन स्वर है राजेंद्र कुमार का।
1: हमारे सामने अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम भलाई बुराई, भ्रम और सच्चाई, उपयोगी अनुपयोगी, कर्तव्य और भावना, इनको अलग अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ये कई बार आपस में इतने गुथे हुए होते हैं कि हमारी बुद्धि संशय में पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा विवेक ही साथ देता है और हम इन दोनों को अलग अलग करने में सफल हो जाते हैं, और तब बुद्धि के निश्चयात्मक रूप ले लेने से हम सही निर्णय कर लेते हैं। ये विवेक क्या है? संस्कृत में विवेक के मायने हैं विचर पृथग भावे विवेचनम, अर्थात अलग अलग कर सकने की योग्यता, जिसे हम कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देना या नीर छीर विवेक वाली बुद्धि। पर विवेक का मतलब दो विकल्प में से एक का चयन करना नहीं, क्योंकि विवेक के सामने दो या अधिक विकल्प अलग अलग नहीं होते, बल्कि आपस में इतने उलझे हुए होते हैं कि ये निश्चय ही नहीं हो पाता कि भला क्या है और बुरा क्या है। यद्यपि कुछ साधारण बातों में विकल्प स्पष्ट भी होते हैं। अंग्रेजी विवेक का पर्याय है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये विवेक बुद्धि के माध्यम से काम करता है। बुद्धि का काम है किसी भी बात का विश्लेषण करना, इसलिए ये सदैव अनिश्चय और निश्चय के बीच बनी रहती है। विवेक इसे निश्चयात्मक बनाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो है पर उसमें विवेक की कमी है तो वो सफल नहीं हो सकता। कौन सी बात कहाँ कहना या करना है, इसका निर्णय विवेक के बिना बुद्धिमान व्यक्ति कर ही नहीं सकता। विवेक को शक्ति कहाँ से मिलती है? विवेक को कैसे बढ़ाया जाए? तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। यहाँ सत्संग को व्यापक अर्थ में लेंगे। अच्छा वातावरण जो उद्यमशील बनाए, उत्साह जगाए रखे, ज्ञान विज्ञान तर्क सीखने को मिले, अच्छे संस्कार मिलें, सामाजिक हित की बातें सीखने को मिलें, इन सबसे विवेक विवेचन क्षमता नीर छीर न्याय की योग्यता बढ़ती है। इसके विपरीत यदि निराशा, घरेलू कलह, ईर्षा द्वेष, क्रोध की भावना, झूठ चालाकी का वातावरण मिलता है तो विवेक कुंठित हो जाता है। भले बुरे की पहचान जाती रहती है, बुद्धि पर पर्दा सा पड़ा रहता है। बड़े असमंजस की स्थिति में विवेक की सहायता से किस प्रकार सही निर्णय हो सकता है, इसका उदाहरण चित्रकूट की सभा में देखा जा सकता है, जिसमें भरत पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि राम के प्रति प्रेम और रघुकुल रीति से पिता की आज्ञा, इन दोनों में से किसे चुने, क्योंकि संपूर्ण सभा भरत की ओर ही देख रही थी। तब निरखि विवेक विलोच नहीं शिथिल स्नेह समाज। ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर विवेक का अर्थ रामानुजाचार्य ने भोज

0: जन का विवेक किया है जो स्वच्छता व स्पर्श दोष से शुरू होकर ईमानदारी की कमाई से प्राप्त अन्न तक जाता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से ही शुद्ध मन बनेगा। पर शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में नित्य अर्थात आत्मा परमात्मा और अनित्य अर्थात संसार, इन दोनों के बीच अंतर कर पाने की योग्यता, ऐसा अर्थ विवेक का किया है। तुलसी कहते हैं, बिनु विवेक संसार घोर नदी पार न पावे कोई। विवेक इस प्रकार सांसारिक सुख और सफलता तथा आत्मिक उन्नति दोनों में समान उपयोगी है। इसलिए सत साहित्य सत संगति से हम विवेकशील बने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख श्री ब्रजेंद्र श्रीवास्तव का था और वाचन स्वर था राजेंद्र कुमार का। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। जैविक खेती आज की आवश्यकता, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ओपीएस नरवरिया।
1: जमीन को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि हमें कौन कौन से पौधों के जो आवश्यक तत्व हैं वो कैसे उपलब्ध हों, और हमारी जमीन की भी उर्वरा शक्ति है, उसी की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, वो बरकरार बनी रहे। इस उद्देश्य हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करते हुए हमारी जो पहले से परंपरागत खेती चली आ रही है उस पर हम पुनः आना चाहते हैं, ताकि हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन की दशा ठीक बनी रहे और हमारे जो स्वास्थ्य है, मानव है, हमारा पर्यावरण है, उस पर भी प्रतिकूल असर न पड़े। इन कारणों से अब जैविक खेती, जिसको आजकल हम अपूर्व से भी ये परंपरागत खेती के रूप में हम मानते हैं, आज आवश्यक हो गया है। जो हमारे रासायन खाद हैं जिनको हमें देने के लिए आवश्यक निर्भरता होती है, तो उसमें हमारा उसकी निर्भरता हमारी बहुत कम होती है, हमें रासायनिक खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लागत बहुत कम आती है। दूसरा, जो हमारे जैविक खाद का उपयोग होते हैं तो उस कारण से उसकी गुणवत्ता में हमारी जमीन में सुधार होता है, और विशेष करके जो हमारे जमीन में जल शोषण करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, पानी का वाष्पीकरण भी हमारा काम होता है, और भूमि के जल स्तर में भी काफ़ी वृद्धि होती है कि जब पानी गिरता है, अवशोषण होता है, तो धीरे धीरे हमारा जो जल स्तर होता है जमीन का वो बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है, और कठोर जमीन को भुरभुरापन उसमें जमीन में आता है। सबसे बड़ी फायदा इसका होता है, फसल उत्पादन में लगने वाली लागत बहुत कम होती है, और अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो बाजार है उसमें हमारा जो जैविक उत्पाद होता है उसमें अच्छा मूल्य मिलता है, तो ये लाभदायक खेती भी काश्तकार के लिए कही जाती है। और दूसरा है कि जो भी उपभोक्ता होंगे हमारे, तो उनको भी एक दुष्प्रभाव रहित कहना चाहिए कि उनको भोज्य पदार्थ या सामग्री, फल सब्जियां जिनमें रसायन कम होंगे, तो हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से भी हमारा जो भोजन है, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दाल हैं, उनमें ये हमारा जो औषधि का जो प्रभाव है वो बहुत कम होगा, और स्वास्थ्य के लिए भी, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। जैविक खेती करने के लिए बड़ा आसान तरीके हैं, जैसे एक नाडैप टांके का निर्माण करके एक नाडैप खाद तैयार करना। दूसरा, एक हमारा केंचुआ हमेशा से कृषकों का और कृषि जमीन का एक मित्र रहा है, उस केंचुआ खाद से भी हम एक बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और जब हम जमीन में उपयोग करते हैं तो इससे हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो केंचुआ खाद जिसको हम बर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, तो इसको तैयार करके हम खेत में डालते हैं, तो इससे हमारी उत्पादन में वृद्धि होती है और जमीन की दशा और भी सुधरती है। और इसमें कई ऐसे बिंदु भी हैं कि जैसे गोबर गैस संयंत्र लगवाते हैं, उससे जो स्लरी निकलती है उसका हम जमीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी जमीन भुरभुरी होती है, जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, और हमारा पोषण भी पौधों के लिए मिलता है जमीन के माध्यम से। तो गोबर गैस संयंत्र के माध्यम से भी, उसके माध्यम से भी हम इस जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा एक ऐसे भी हमारे हैं कि हरी खाद है, ये भाई लोग बहुत पहले से हमारे परंपरागत ढंग से मान के चलते हैं, हरी खाद की हमारी ढांचा है, सनई है, उड़द है, मूंग है, जहाँ कोई इसके बीज उपलब्ध भी रहते हैं, उसके माध्यम से हम फसल उगाते हैं, और फूल आने फले लगने से पहले पहले ही हम उसको जमीन में मिला करके मिला देते हैं, और उसका सड़न होने के बाद वो जमीन में मिल जाते हैं, और एक बेहतर बढ़िया हरी खाद के रूप में हमारा जमीन को पोषण मिलता है, जो पौधों के लिए बहुत लाभदायक और आवश्यक होता है। ये जैविक खेती का हिस्सा कल्चर भी

0: एक बन गया है और बिल्कुल सबसे सब विधियों से सस्ता और सरल है। ये हमारे जो भी दलहनी फसलें हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनमें भी कल्चर का उपयोग होता है और बहुत कम मात्रा में और बहुत सस्ती दर पर जो उपलब्ध होते हैं, ये जैविक खेती का भी हमारा एक प्रमुख अंग है और हर तरह की फसल में हमारे कल्चर उपलब्ध हैं। और एक कल्चर हमारा ऐसा भी उपलब्ध है जो हमारी खेती में उपलब्ध फास्फोरस जो स्तर हो जाता है उसको ग्लनशील बना करके हमारे पौधों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो कल्चर विभिन्न प्रकार के जो कल्चर हैं जो दलहनी तिलहनी और खाद्यान्न फसलों में है उसका उपयोग करके भी हम जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। नीरथल शैवाल भी एक हमारा जैविक खेती का एक अंग है। विशेष करके हमारा जो धान की फसल होती है वो हमारा उसमें पानी भरा रहता है तो उसके माध्यम से हमारे ये वातावरण में जो 76% नाइट्रोजन होती है उसमें से वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित करके हमारे धान की फसलों में मतलब नील हरित काई हमारी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके हमारे पौधों को उपलब्ध होती है, जिससे हमारी लागत भी कम होती है और पौधों को हमारे पोषक तत्व के रूप में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है।
1: जैविक खेती आज की आवश्यकता, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे ओपीएस नरवरिया और कार्यक्रम था कृषि चर्चा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
1: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः INS दुनागिरिः, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
3: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
2: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वनकर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसंपन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+4500 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेषव्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्टपरिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां 7 जनाः मृताः, 70+ श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3

0: युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम काव्य पाठ। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मुरारीलाल गुप्त गीतेश की कुछ कविताएं। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए प्रातः 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भूपेंद्र खरे की गाई कुछ गजलें। 9:00 का समय होता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं सुजल जैन का गायन, राग होगा ललित। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। समय होगा प्रातः 10:05 पर। ग्यारह बजे से प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होता है। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर होगा, जो कि भोपाल की प्रस्तुति होगा। स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति होगा और समय होगा दोपहर 1:00। दोपहर 1:30 पर लोक संगीत कार्यक्रम भोपाल की प्रस्तुति होगा। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। दोपहर 2:00 आनंद लीजिए फिल्म संगीत का और 2:30 पर आनंद लीजिए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। ये तो था हमारी इसी सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

अब जान लें हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों को। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा, जो कि भोपाल की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है शाम 6:00। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल सुना जा सकता है शाम 7:20 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:15 पर और रात्रि 10:00। ये तो था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कुनू नेशनल पार्क में चीता परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का जताया आभार। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 133 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। और प्रदेश में 26 जून तक हीटवेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम। आज 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्योपुर जिले स्थित कुनू नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगी। इसके बाद वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्य कर्मियों से मुलाकात करेंगी। कल राष्ट्रपति ने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया था, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनू नेशनल पार्क में हैं। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कल जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ। संस्कृति और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति के प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए माँ नर्मदा की सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने मुख्यमंत्री को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तस्वीर तथा कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की प्रतिकृति उपहार स्वरूप प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि योग विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दुनाकिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के इछावर और भैरुंदा में आयोजित जन कल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 67 ग्रामीण सड़कों के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक के स्वीकृति पत्र सरपंचों को प्रदान किए, जिनसे 36,000 से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। वहीं भैरुंदा में श्री चौहान ने 28.53 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने इस दौरान मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। रेल मंत्री ने बताया कि यह टर्मिनल लगभग 450 रेलगाड़ियों के संचालन में सक्षम होगा, जिससे परिचालन दक्षता और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने सीकर जिले के सुंदरपुरा में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा भी की, जिससे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। CBSE ने छात्रों से सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार

0: चार बुलेटिन यूट्यूब पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर के मुंडेर पर चहचहाती गौरैया अब शहरों से लगभग गायब हो चुकी है, लेकिन पन्ना जिले में एक शख्स ने इस नन्ही चिड़िया को फिर से बसाने की ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि सैकड़ों गौरैया अब फिर से चहचहाने लगे हैं। आज सुनिए कि कैसे एक इंसान की संवेदनशीलता ने पूरे गांव को गौरैया का सुरक्षित आशियाना बना दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
2: पन्ना के पटना तमोली गांव में ग्राम वन समिति अध्यक्ष अजय चौरसिया द्वारा बरसों से गौरैया संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना और पानी की भी नियमित व्यवस्था की जाती है। इसका लाभ केवल गौरैया ही नहीं बल्कि क्षेत्र के कई अन्य पक्षियों को भी मिल रहा है।
3: मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी छोटी सी मुहिम न जाने कितने पक्षियों की जिंदगी को संवार सकती है। प्रकृति संरक्षण का कार्य बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि संवेदना से हो सकता है। आज सैकड़ों बच्चों ने उन पक्षी घरों में जन्म लेकर के चहचहा रहे हैं और उनकी चहचहाहट से पूरा घर आंगन गुलजार हो रहा है।
2: इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पूरे गांव में दिखाई देने लगा है। वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना वन मंडल अनुपम शर्मा का मानना है।
4: अजय चौरसिया जी जो कि पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो गोल वाली एक लौकी होती है उससे गौरैया के घोंसले बनाने का उन्होंने प्रण लिया और कई प्रयास भी किए। हर घोंसलों में गौरैया आई और उन्होंने दो दो तीन तीन बच्चे भी दिए, तो आज की डेट में ये काफी एक सक्सेसफुल मुहिम के तौर पर पटना तमोली में है।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
1: प्रदेश पुलिस ने राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 10 दिनों में करीब 2,90,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के 14 अंचलों में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका के मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 26 जून तक हीटवेव, गर्मी और आंधी बारिश वाला मौसम बना रहेगा। मॉनसून के नहीं आने और प्री मॉनसून गतिविधि कम होने से उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिसका असर पिछले 2 दिन से जबलपुर संभाग में लू के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आज तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में 28 से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। आगरमालवा में दिव्यांग और वरिष्ठों के लिए आज से 25 जून तक जिले के विभिन्न स्थानों पर चिन्हांकन शिविर आयोजित होंगे। नीमच में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 कल जिले के 2 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। वहीं धार जिले में भी 3 निर्धारित केंद्रों पर नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। अशोकनगर पुलिस को 3 जिलों में सक्रिय लूट गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुना में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हनुमान टेकरी परिसर में किया गया। वहीं नर्मदापुरम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल पूरा जिला योगामय नजर आया। बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य पाठ। इसमें सुनिए मुरारी लाल गुप्त गीतेश की कुछ कविताएं।
1: प्रस्तुत है एक गीत, मेरे देश नमन करता मैं। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। तेरे पूजन अर्चन को मैं शब्द सुमन बिखराता हूँ। तेरे पूजन अर्चन को मैं शब्द सुमन बिखराता हूँ। इस माटी में जन्मा हूँ मैं, इस माटी में जन्मा हूँ मैं, इससे जीवन पाया है। इस माटी में जन्मा हूँ मैं, इससे जीवन पाया है। गंगा यमुना की कलकल ने मधुरिम गीत सुनाया है। इस माटी में जन्मा हूँ मैं, इससे जीवन पाया है। गंगा यमुना की कलकल ने मधुरिम गीत सुनाया है। बहती मलियज पछवा पुरवा मन को हर्षित कर जाती, बहती मलियज पछवा पुरवा मन को हर्षित कर जाती। खेत खेत फैली हरियाली समय देवता को भाती, खेत खेत फैली हरियाली समय देवता को भाती। पितृ बीज से पौध बना मैं माँ को बहुत सुहाता हूँ, पितृ बीज से पौध बना मैं माँ को बहुत सुहाता हूँ। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। तेरे पूजन अर्चन को मैं शब्द सुमन बिखराता हूँ। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। अगला छंद है, पोर पोर में गंध बसी है फूलों वाली बस्ती में, पोर पोर में गंध बसी है फूलों वाली बस्ती में। कोई नहीं दूसरा जग में तेरे समझो हस्ती में। सारा जग प्यारा है मुझको, सारा जग प्यारा है मुझको, पर तेरी बात निराली। संध्या होती है पश्चिम में तुझ पर पूरब की लाली, संध्या होती है पश्चिम में तुझ पर पूरब की लाली। पावन वेद ऋचाएँ सारी उन पर धार चढ़ाता हूँ। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। तेरे पूजन अर्चन को मैं शब्द सुमन बिखराता हूँ। मेरे देश नमन करता मैं, तेरे ही गुण गाता हूँ। इसके बाद प्रस्तुत है गीत, पीड़ा के अतिशय पर मुस्काया। मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया, मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। जितने उपकरण जुटाए सुख सुविधा के, जितने उपकरण जुटाए सुख सुविधा के, जीवन में उतना ही और बढ़ गया तम। जितने उपकरण जुटाए सुख सुविधा के, जीवन में उतना ही और बढ़ गया तम। अभिलाषा बाहुपास में बांध रही है, अभिलाषा बाहुपास में बांध रही है, परवस बौराए से रोते गाते हम। मन मरीचिका ने कुछ ऐसा भटकाया, मन मरीचिका ने कुछ ऐसा भटकाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया।

0: में की भी आस नहीं। मिलान दर्पण जो अंतर छवि दर्शाए और चकित में मिलने की भी आस नहीं। राग पास में बंधा हुआ मन बौराया, राग पास में बंधा हुआ मन बौराया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। और इस गीत का अंतिम छंद, यस अपयस के हाथों बिका हुआ जीवन, यस अपयस के हाथों बिका हुआ जीवन, दर्द चुभन कुंठाने रोड़े अटकाए। यस अपयश के हाथों बिका हुआ जीवन, दर्द चुभन कुंठाने रोड़े अटकाए। यूं तो खिंची हुई है लक्ष्मण रेखा भी, यूं तो खिंची हुई है लक्ष्मण रेखा भी, पर सोने का हिरणा सबको बहकाए, पर सोने का हिरणा सबको बहकाए। कवि मन पीड़ा के अतिशय पर मुस्काया, कवि मन पीड़ा के अतिशय पर मुस्काया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। मन के सपनों ने कुछ ऐसा भरमाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया, युग युग से चलता जा रहा बटोही मंजिल तक पहुँच न पाया। और अगला गीत जैसे गरम रेत पर शीर्षक से प्रस्तुत है। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। जीवन भले व्यवस्था पर जीना पड़ता है, जीवन भले व्यवस्था पर जीना पड़ता है, आदमी वही है जो दुर्दन से लड़ता है। जीवन भले व्यवस्था पर जीना पड़ता है, आदमी वही है जो दुर्दन से लड़ता है। हैं तपते मरुथल में दिवा स्वप्न छाँव के, हैं तपते मरुथल में दिवा स्वप्न छाँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के। और अगला छंद कि किरण परी आशा की जीने का संबल है, किरण परी आशा की जीने का संबल है, बहती है धार वही जिसकी गति अविरल है। किरण परी आशा की जीने का संबल है, बहती है धार वही जिसकी गति अविरल है। साथ न जाए कोई साथी सभी पड़ाव के, साथ न जाए कोई साथी सभी पड़ाव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। और इस गीत का अंतिम छंद, सुबह सुबह चलना है, सुबह सुबह चलना है रवि जैसा ढलना है, सुबह सुबह चलना है रवि जैसा ढलना है, अंधकार को बेधें दीपक बन जलना है। सुबह सुबह चलना है रवि जैसा ढलना है, अंधकार को बेधें दीपक बन जलना है। तब होंगे हम उत्तर, तब होंगे हम उत्तर भारी काँव काँव के, तब होंगे हम उत्तर भारी काँव काँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के। आदमी हों शहर के या कि वे हों गांव के, जैसे गरम रेत पर चिन्ह नंगे पाँव के।
1: काव्य पाठ कार्यक्रम में अभी आप मुरारी लाल गुप्त गीतेश से उनकी कुछ कविताएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था और संगीत था नौशाद का। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने चुना है फिल्म दो कलियों से। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

दिल दे के देखो। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार मजरू है और संगीतकार है उषा खन्ना।

दो रास्ते। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म जब जब फूल के लिए से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और

0: के लिए अमेरिका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

मिडिल वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए भूपेंद्र खरे की गाई कुछ गजलें।

उन्होंने श्योपुर जिले स्थित कुनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। वे सहरिया जनजाति के चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स और स्थानीय वन्यकर्मियों से मुलाकात भी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां उन्हें बताया गया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं, जिनमें से 49 कुनो नेशनल पार्क में है। दौरे के बाद आज राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्री क्षमता किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री ने कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों को समर्पित करते हुए कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। प्रदेश भर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राज्य पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 2,90,00,000 रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ और अन्य संपत्ति जब्त की है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। और महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रिला आपके साथ। श्रोता मित्रों, हर बार की तरह इस बार फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सभी कैसे हैं। निश्चित रूप से आप कह रहे होंगे कि कभी कभार जब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो वो थोड़ी सी राहत दे देती है, लेकिन वापस से जब धूप आती है तो फिर गर्मी को बढ़ा देती है। और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 25 जून से 30 जून तक आने की संभावना है। तब तक तो इस गर्मी से जूझना ही पड़ेगा, है ना। और ऐसे में यदि आप जब बीमार हो जाएं और अस्पताल की लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार आपको करना पड़े तो ये कष्ट को और बढ़ा देता है, है ना। इलाज की प्रक्रिया को आसान और आधुनिक बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी योजना तैयार की है। भोपाल को देश का पहला मॉडल डिजिटल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बनाने की तैयारी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत यहां सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। मरीज की पूरी हेल्थ कुंडली मोबाइल में होगी और डॉक्टर एक क्लिक पर उसका मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेंगे। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह पेपरलेस होगा। योजना लागू करने के लिए 4 महीने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें सभी अस्पतालों और डॉक्टर्स को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पर्चे के लिए कतार में अब नहीं लगना पड़ेगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल या अस्पताल में QR कोड स्कैन करके डिजिटल फॉर्म भरे जाएंगे। ये संबंधित डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा और इससे टोकन मिलेगा। फिर अपनी बारी पर आप आसानी से डॉक्टर को दिखा पाएंगे। मरीज की आभा ID बनेगी तो डॉक्टर उसकी सहमति से ही रिकॉर्ड देख सकेंगे। इसके लिए मरीज को OTP देना होगा और सभी अस्पतालों के एक नेटवर्क से जुड़े होने के कारण रिकॉर्ड मिलने में आसानी होगी। पर्चे से लेकर रेफलर तक सभी पेपरलेस होगा। मरीजों को फाइलें रखने में झंझट से मुक्ति मिलेगी। प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम में ही जनरेट होगा। डिजिटल पर्चे के आधार पर ही अस्पताल की फार्मेसी से दवा भी आप प्राप्त कर पाएंगे। सिस्टम लागू होने के बाद फर्जी डॉक्टर्स और एक ही मरीज के नाम पर बार बार क्लेम जो किए जाते हैं उनको पकड़ना आसान होगा। आयुष्मान और अन्य योजनाओं में डुप्लीकेट बिलिंग पर भी इससे निगरानी संभव हो जाएगी, है ना। ये बहुत आसान प्रक्रिया। बहरहाल खबरें तो और भी हैं, लेकिन क्यों ना गुनगुना लिया जाए एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोता मित्रों, यदि आप ट्रेन में यात्रा करने वाले हों तो संभल कर यात्रा करें। अब ट्रेन में यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उससे टिकट के अलावा 500 रुपये जुर्माना तक वसूला जाएगा। पहले ये 250 रुपये था। इसके अलावा यदि कोई पुरुष यात्री, महिला कोच या आरक्षित सीट पर बिना अनुमति यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उस पर 2500 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर ये एक अच्छी खबर है ना? वैसे भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। अब तमिलनाडु के तूतुकुड़ी ज़िले को ही लीजिए। यहाँ पर 40 महिलाओं ने नदी तालाबों को खत्म कर रही जलकुंभी से हैंडीक्राफ्ट बनाया है। इससे 126 किलोमीटर लंबी तिमिरबरणी नदी में फिर बहाव आ गया है। अब कई सारे तालाब जलकुंभी से मुक्त हो गए हैं। ये महिलाएं नदी तालाबों से जलकुंभी इकट्ठा करके नारियल वेस्ट के साथ मिलाकर हैंडीक्राफ्ट बना रही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने 33 लाख रुपए का निवेश कर ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी। इससे खत्म होते तालाबों को भी नया जीवन मिला है। ये महिलाएं नदी तालाबों से जलकुंभी लाकर हल्दी नमक के पानी से धोती हैं और फिर उसे धूप में सुखाती हैं। इसके बाद उससे रेशे निकालकर टोकरियां, डस्टबिन और सजावटी सामान बनाती हैं। इस काम में लगी 25 साल की सुजाता बताती हैं कि इससे नदी तालाब साफ हो रहे हैं और बेरोजगारी भी दूर हो रही है। सुजीता कहती हैं कि हम स्वयं सहायता समूह के जरिए सामान बेचते हैं और इससे हर महीने 15 से 18 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं। है ना अच्छी खबर?
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फते हैं पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: श्रोता मित्रों, हमने से कई लोग कई बार ये सोचते हैं कि बढ़ती उम्र में मन को जवान क्या रखा जा सकता है? क्या सकारात्मक सोच सचमुच जीवन में फर्क ला सकती है? तो मैं कहूँगी कि हाँ।

बिल्कुल, और कई लोग मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। जैसे कि मन में आपकी जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और भविष्य के लिए उत्साह बनाए रखना हमेशा ज़रूरी होता है। इससे अक्सर आप अधिक संतुष्टि महसूस करेंगे और सक्रिय बने रहेंगे। हमारा अवचेतन मन सही और गलत का फैसला नहीं करता, वो केवल उन विचारों को ही स्वीकार करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। यदि आप रोज़ ये सोचते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मन उसी दिशा में काम करने लगेगा और धीरे धीरे आप निष्क्रिय होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि मैंने आज कुछ सीखा है, मैं अभी भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ और अभी भी सक्रिय रह सकती हूँ, तो ये विचार मन को एक नई ऊर्जा पैदा करने में मदद करेगा। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच बहुत स्पष्ट अंतर नहीं करता है, इसीलिए जीवन में सकारात्मक मानसिक चित्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खुद को स्वस्थ, आत्मनिर्भर और खुश देखकर सोचें, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, यात्राएं करें, सेवा कार्य और किसी नए लक्ष्य की कल्पना करें। ये दृष्टिकोण आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखने में मदद करेगा। लेकिन यदि आपके मन में अकेलापन, चिंता, नींद की समस्या, तनाव या मन लगातार उदास रहने जैसी परेशानियाँ हैं, और आप यदि वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिक टैली मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। यदि समस्या गंभीर होती है तो संबंधित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने में भी मदद प्रदान की जाएगी। बहरहाल, एक बात तो आप सभी मानते होंगे कि हर इंसान में कमजोरियों के साथ साथ कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है, बस ज़रूरत होती है उसको पहचानने की और फिर उसी दिशा में काम करने की। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, यानी कि कोई तुमसा नहीं।

खबरों और नगमों का ये कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, मैं हूँ आपकी रेडियो मित्रेला आपके साथ। श्रोता मित्रों, साइबर ठगी, ऑनलाइन अपराध, महिला और बाल सुरक्षा जैसे मामलों में शिकायत कैसे और कहां दर्ज कराई जाए, इसकी जानकारी अब स्कूली स्तर पर ही दी जाएगी। नई पीढ़ी को कानून, अधिकारों और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने सृजन संवाद कार्यक्रम की पहल शुरू की है। पुलिस मुख्यालय की सामुदायिक पुलिसिंग शाखा ने स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को ऐसे सक्षम बनाना है कि वे विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकार, शिकायत प्रक्रिया और पुलिस व्यवस्था की बुनियादी जानकारी दे सकें। उप पुलिस निरीक्षक ने बताया है कि सृजन संवाद और जन संवाद अभियान का केंद्रीय विषय मेरा अधिकार मेरी जिम्मेदारी रहेगा। इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और कानून के प्रति सकारात्मक सोच विकसित की जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों और गांवों में स्कूलों को स्थानीय पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा। इससे हर क्षेत्र में विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझने, शिकायत तंत्र जानने और पुलिस जनसंवाद को मजबूत करने का अवसर भी मिलेगा। है ना ये अच्छी जानकारी बच्चों के लिए। इसके अलावा एक और खबर है, खेलों में कैरियर बनाने का सपना देख रहे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर। राज्य सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग ने बैडमिंटन और हॉकी अकादमियों के लिए प्रदेशव्यापी टैलेंट सर्च का अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत ग्वालियर में बैडमिंटन और हॉकी खिलाड़ियों के चयन के लिए जुलाई में ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ियों को राज्य की प्रतिष्ठित खेल अकादमियों में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। विभाग ने 17 जून से ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक खिलाड़ी विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्वालियर अकादमी में बैडमिंटन के ट्रायल 7 से 10 जुलाई तक आयोजित होंगे, जबकि हॉकी के लिए चयन प्रक्रिया 8 से 10 जुलाई तक चलेगी। सभी ट्रायल पूरी तरह निःशुल्क रहेंगे, यानी आपको उनका एक भी पैसा नहीं देना है। खिलाड़ियों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञ प्रशिक्षक खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस, खेल, बहरहाल हम ध्यान रखते हैं आपके मनोरंजन का भी, तो क्यों ना गुनगुना लें इस गीत को

और अब घड़ी का इशारा है कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करने का। तो समेटते हैं हम अपने इस कार्यक्रम को, कल फिर नई खबरों और नगमों को लेकर हाजिर होंगे आपके अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए सुजल जैन का गायन राग ललित।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुजल जैन का गायन, राग था ललित, तबला संगीतकार थे विकास पिपट। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मानसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गाँव को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के तहत कलेक्टर रिजु बाफना ने ज्योति नगर में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगरपालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ कमला आर्य को समिति बनाकर जाँच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जाँच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।

साहिल हाडा और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सांवरिया फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोता मित्रों ने। गांव कालाना, तहसील भदरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासर, सचिन, सतीश, योगेश और युधव। गांव टोरवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तिप्ता थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वमिका और वाणी थांदी। गजनुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और उनके सभी साथी। बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन और उनके परिवार के सभी सदस्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और उनके साथी। लाल माता सुदामा नगर रटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता मित्रों ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और उनके साथी। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिव्यांशी खेड़ा और उनके सभी साथी। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। ग्राम पंचायत कालेगांव जफाराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना।

कोयला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा था सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविका सिक्का। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और उनके सभी साथी। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिरा जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। घमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और उनके साथी। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता मित्र। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और उनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकलम और नफीसा प्रवीण। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आयन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अजीत गवर्णकर राही, श्रीमती सरिता गवर्णकर, प्रिंस एकांश गवर्णकर। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवर्णकर, सिद्धांत गवर्णकर और अर्जुन गवर्णकर। आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवर्णकर, सुमित गवर्णकर और कुमारी ध्वनि गवर्णकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राउडी राठौर का ये गीत श्रेया घोषाल और जावेद अली की आवाज़ों में।

साहू फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए सचिता टंडन, ध्वनि भानुशाली और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहा है संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, दीपक और चांदनी यादव, सौदागर संतर मुरार से गिरीश मिश्रा, गुड्डू मिश्रा और निशा मिश्रा, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू और गुड्डू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभरगली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा सोनवनी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और उनके साथी, नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, महसवाणी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुन धांडे, वाल्मीकि धांडे, निनांजी धांडे और स्वप्निल धांडे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे और उनके साथी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी, बानू बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और पूरे मुलाणी परिवार के सदस्य। ग्राम व पोस्ट फुल चिंचोड़ी, तालुका पंढरपुर, जिला सोलापुर से। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू। रोही दास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। ग्राम पंचायत बैठना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश वर्मा और धनेश्वरी वर्मा। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। पद्म टाकेज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान और उनके साथी। श्री गणेश आविका आर्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अवनी जीविका, सोनू कुंभार और अर्चना कुंभार। कोयते बस्ती पुनावली से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे और साईशा सोनवणे। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रेडी का ये गीत, केके और तुलसी कुमार की आवाज़ों में।

RRR। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत राग पटेल की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहा है दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम लोहेडी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, मोहम्मद यूसुफ आसमा कुरैशी। जेल रोड मथुरा से सफरुद्दीन बेलदार, अल्ताफ बेलदार, कल्लू मल्लू कलिया बेलदार। छठिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार। बिहार भवन दिल्ली से अकरम कटूरिया और उल्लाह। जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर और उनके साथी। सरगुजा मेनपाट से रूबना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा और रेशमा थापा। झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, बदरू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जू वली अंसारी। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा डोम, यूसुफ आसमा डोम और उनके साथी। सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहिदास चौक पांडरपुर जिला से। कुंभर गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक शर्मा। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। लसोड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश, चंद्रांग डांगी और उनके परिवार के सभी सदस्य।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं राजस्थान से राजू टुटेजा, उर्मिला गुड्डू, मन्नू तन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव, करणपुरी और उनके परिवार के सभी सदस्य। बरेड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जोजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आजू।
1: यूं ही तुम मुझ

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कुनू नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापना परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति मुर्मू का चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, स्थानीय वन्यकर्मियों ने संवाद का भी कार्यक्रम है। इसके बाद राष्ट्रपति श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए दुनिया भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक पोस्ट में उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह दिन आने वाले समय में अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर जिले में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका का विमोचन और शिक्षा विद्या को भी सम्मानित किया गया। और पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल है मैडम
1: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल, कौन बोल रहे हैं?
2: कालीचरण यादव।
1: कालीचरण यादव, फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। पसंद बताएं अपनी।
2: फिल्म का नाम है खुली फिल्म का गाना सुनना। मुझे पीने का शौक है, पीता हूं गंबलाने।
1: मुझे
2: पीने का शौक है, खुली फिल्म अमिताभ बच्चन की पिक्चर है ना।
1: जी जी,
2: वही गाना सुनना, गाना पसंद है
1: जी। नमस्कार,
2: आप कौन बोल रही हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, फ़ोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: अरे
0: नाम बताएं
1: नमस्कार
0: अपना।
1: बहन जी
0: नमस्कार।
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट राजेंद्र, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: सैनी जी, स्वागत है। बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं सिलाई करता हूँ और इस समय सिलाई कर रहा था, मशीन चला रहा था और नंबर भी डाल करता जा रहा था और यहाँ पे कॉल चालू हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया, फिर मैंने देखा अरे कॉल चालू है। जी
0: अच्छा जी, चलिए बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी आज आप सुनवा देना, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहके की फूल खिले, ये
0: अच्छा,
1: गीत है शायद साजन का घर, हाँ
0: साजन का घर।
1: उस फिल्म का गीत
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन सावन तो अभी आया नहीं है।
1: बस इंतजार है, उस इंतजार ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही इस समय।
0: जी, चलिए कार्यक्रम में
1: और
0: फोन
1: एक
0: करने के लिए।
1: मेरी
0: हाँ।
1: रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के बारे में, जो फोन वो का नाम बात आपकी जीत हमारे कार्यक्रम चलता है, अगर उसमें लास्ट में जब जैसे कार्यक्रम समापन होता है और अगला विषय बता दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, फिर बनेगा
0: सर होता
1: कार्यक्रम।
0: क्या है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले अलग अलग होते हैं, तो अब किसी को विषय पहले से पता नहीं रहता कि सामने वाला क्या लेने वाला है विषय अगला, इसलिए नहीं बता पाते। और सभी लोग तब भी नहीं सुनते हैं, नए श्रोता भी जुड़ते हैं या उस समय नहीं लगाते हैं फोन, तो किसी को पता नहीं पड़ पाता, तो इसलिए उसी समय बताना रहता है। ठीक है,
1: ठीक,
0: चलिए नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे, और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका इंतजार रहे।
0: इंतजार रहे। बहुत बढ़िया, आप नाम भी बता दें अपना।
1: हम आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
0: मोहम्मद
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, पालदा नाका इंदौर से। कैसे
0: जी,
1: मैडम आप?
0: बस बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा, तो आपका नाम जो है, तो आप मोहम्मद रफ़ी के गाने पसंद करते हैं कि नहीं?
1: हाँ, गाने पसंद है मैडम, और बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं उनके हम।
0: जी, तो आज भी कुछ वही सुनना चाहेंगे?
1: जी मैडम, आप कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: जी, फिल्म का नाम है सुहाग, ये शशि
0: जी।
1: कपूर और अमिताभ बच्चन वाली। इसमें गाना है बॉबी परवीन बॉबी और शशि कपूर का है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, मैं तो बेघर हूं अपने घर ले चलो।
0: मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। जी बिल्कुल
1: जी
0: सुनवाती। चलिए, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी, स्वागत है
1: बेटा
0: कार्यक्रम में।
1: राजस्थान से। हाँ,
0: राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी गर्मी कैसी है वहाँ?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी तो। हाँ,
0: गर्मी हो रही है जी। तो आप वहाँ पे क्या खेती किसानी करते हैं?
1: नहीं, खेती किसानी नहीं, हम जो सीनियर सिटीजन
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है
1: है।
0: जी। तो आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो आप क्या सुनेंगे
1: गाना बताऊं?
0: जी, बताएं।
1: ये सांझो सवेरे का है क्या?
0: आप तो फरमाइश रख
1: ओ
0: दें।
1: सजना मेरे घर आना।
0: अच्छा जी
1: हम तो पुराने गाने भी सुनते हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत पहले से। लिए
0: जी सुनिएगा कल आप ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जसराम जाटव बोल रहा हूँ मैडम, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जसराम जाटव?
1: हाँ
0: जी, पहले भी आपसे बात हुई है कई बार?
1: हाँ मैडम बात हुई है। कौन कौन बोल रही मैडम तुम?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ मैडम आपसे बात मेरी हो गई।
0: जी, आज क्या पसंद है आपकी?
1: हमको मैडम सुनना है दिलवाले पिक्चर का गाना रहेगा मैडम,
0: दिलवाले का कौन सा?
1: जीता हूँ जिसके लिए मरता।
0: आप अक्सर यही गाना सुनते हैं, और कोई फरमाइश नहीं है आपकी?
1: नहीं मैडम क्या, वो मेरे को ये गाना अच्छा लगता है।
0: जी, चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। हाँ
1: जी, फादर डे की पूरी मध्य प्रदेश टीम को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और बड़ी बहन आप बढ़िया हो?
0: जी। बढ़िया है
1: जी, हम ग्राम छातर तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं, और आपको कार्यक्रम हम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं। साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, जबलपुर तो एकदम क्लियर सुनाई दिया था, और बापे भी साफ क्लियर सुनाई दिया था मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं?
1: जी हम प्रतिदिन सुनते हैं रेगुलर 11 बजे 3 बजे तक।
0: 11 बजे से 3 बजे तक। शाम को नहीं
1: हाँ
0: सुनते?
1: हाँ हम शाम को यो वाणी सुना था बापे, 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश को प्रसारण सुनाई दिया था जबलपुर पर।
0: जी। चलिए, अब फिर गीत भी बता दीजिए, आज क्या सुनेंगे?
1: जी फिल्म को नाम है बीबी नंबर वन, और गाना के बोल है मुझे माफ करना ओम साई राम।
0: बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
1: जी
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार बेटा, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रधान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: और सबसे पहले आपको योग दिवस की ढेर ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: क्या
1: मैडम,
0: क्या कर रहे थे इस समय?
1: आज मेरा मैडम ड्यूटी नहीं था, घर पे था, नहा धो के वही घर का काम कर रहा था। कई केंद्रों में फोन किया, रिकॉर्डिंग में जुड़ा और प्रसारण भी सुन रहा था, लाइट भी लगा और केंद्र में भी रिकॉर्डिंग में जुड़ा
0: जी
1: हूँ, आकाशवाणी भोपाल में।
0: जी,
1: बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और फोन लगा अच्छा लगा। मौसम बेहाल है,
0: मौसम
1: परसों पानी गिरा
0: बेहाल
1: था,
0: है कि
1: बादल
0: अच्छा है
1: किया, आज
0: मौसम?
1: आज धूप किया है, बादल का नामो निशान नहीं है।
0: अच्छा, आज
1: इस
0: धूप
1: तरह उलट
0: निकली।
1: पुलट मौसम हो रहा है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज धूप है तो कल छाया मिलेगी। बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है हादसा और गीत के बोल है योगा योगा, गायक अमित कुमार। ये गीत है मैडम।
0: जी जी जी

0: जी हेलो, आकाशवाणी फोन का जी सुन करके हूँ
1: जी।
0: जी मैं मछेरा कला जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ, पवन विश्वकर्मा।
1: पवन विश्वकर्मा
0: जी
1: जी, वहाँ पे क्या आपका व्यवसाय है, कारोबार है, दुकान है, खेती है, क्या करते हैं?
0: ये दीदी हमारी खेती है, किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी करते हैं। तो अभी क्या बोया, धान?
0: जी दीदी अब धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी दीदी नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी अब बारिश हो रही, जब वो धान लगेगी बनिए भरा जाएंगी जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: जी दीदी आज हमको सुनना है, हमने प्यार किया है, मुबारक हो तुमको ये सारी तुम्हारी।
1: जी
0: जी दीदी मेरा फोन दीदी 4 महीने बाद लगा है मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं थी कॉल।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपका कॉल लग गया। इसी तरह पर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी कॉल लगता ही है ना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना,
1: अनोखे सिंह
0: कहाँ से?
1: जिला धार
0: धार से। पसंद बताएं अपनी
1: पर्सन। राम जी की लीला है निहारी। सर
0: फिल्म कौन सी है?
1: ये फिल्म का तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा गाना है, आ सकता है।
0: सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाथे गांव से बोल रहा था गोविंद जलोटिया।
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बताएं, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है सर, पानी की रास्ता देख रहे
0: पानी का रास्ता देख रहे हैं आप? क्या सभी
1: हैं।
0: देख रहे हैं, हम सभी को इंतजार है पानी का। एक झलक दिखलाता है कभी और एकदम से चला जाता है ना। चलिए, तो पानी आप क्या है, बिल्कुल बरसा भी नहीं क्या?
1: नहीं, पानी रुकेगा, छीटे छाटे आके रह जाते हैं।
0: हाँ, ये बात सही है। तो आज क्या धूप निकली है?
1: हाँ,
0: ऐसा ही है इंतजार। खैर, ये भी कहते हैं इंतजार
1: जो
0: का
1: इंतजार में
0: फल
1: है
0: मीठा
1: वो
0: होता है।
1: मिलने में नहीं है फिर।
0: जी, अब देखिए इस बार किस तरह से बारिश होती है, कितनी होती है, बताएं
1: सर ये
0: कौन।
1: गाना था सर, वो जो है बहुत दिन से मतलब अटका हुआ है, बेजू बावरा का है सर, तू गंगा की मौज जमुना की धारा।
0: जी, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। जी, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के अटूट विश्वास से मध्यप्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्यप्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशन प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जबलपुर रीवा और सागर संभाग के जिलों में

हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है आपके पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अग्नि साक्षी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत।

बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही, पूजा, छुटकी, शरद, पूनम, श्रेया और समस्त माखीजा परिवार, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गुहाड़कर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मन का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। बोल समीर के हैं, संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

कृष्णा। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल आनंदराज आनंद के हैं और संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश करता है आप सभी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजाया हुआ गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने, और फिल्म का नाम है त्रिदेव।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही सुना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के

0: पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्न सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राज उद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युम्न सेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी।
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य

0: और संगीत से राजकुमार ब्रजाशवा और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
1: आदेश शिरोधारी है महाराज।
2: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
3: भुवन मोहिनी।
2: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
3: कौन आ रहा है मित्र?
2: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
3: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
2: वो देखिए।
3: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
0: प्रणाम राजकुमार विजयश्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
3: हमें स्वीकार है महाराज।
0: आभारी हूँ युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
2: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
3: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
0: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
3: धन्यवाद महाराज।
4: सारथ।
5: हाँ रण्यक,
4: कुछ समझ रहे हो?
5: अवश्य रण्यक, महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
4: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
5: वो कैसे?
4: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
5: ये तुमने ठीक कहा।
4: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
6: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजयश्रवा महोत्सव स्थल पर पधारकर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत हैं राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
0: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगतियों और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
0: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
0: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना।

कितना सुंदर स्वर है, कहीं ये भुवन मोहिनी तो नहीं? ओह, ये तो मेरी मेरी प्राण प्रिया ही है।

0: कितनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूं।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजयश्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एक रस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही है। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपने जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
2: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
2: नृत्य रोक दिया जाए।
3: महोत्सव संपन्न हुआ, माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
1: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
0: अरण्यक?
5: हाँ मित्र,
0: तुम मेरे साथ ही रहना।
5: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
0: साथ ही हैं?
5: हाँ।
0: कहाँ?
5: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
1: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथी से?
4: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
5: क्या सोच रहे हैं मित्र?
0: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
5: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
4: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
1: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहां कैसे पहुंच गई?
4: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
5: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना।
0: मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
5: तात्पर्य?
0: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
5: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
4: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
5: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
0: क्या कह रहे हो मित्र?
5: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
1: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
4: अरे अरे, अनर्थ हो गया सारथी।
6: क्या हुआ?
5: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया और ये लो,
7: अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
4: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
8: आपकी मणिमाला खो गई।
4: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
8: कह नहीं सकती।
4: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
5: अर्णिक, हाँ क्या हुआ? आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
0: चलो मैं भी चलता हूँ।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
8: यही देखिए ना, यहीं पे तो यहीं पे हो सकती है।
5: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
8: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
5: अरे किससे खो गई?
8: मुझसे।
5: ये तो होना ही था।
4: क्या मतलब?
5: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
4: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
5: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी आप कौन हैं?
4: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
5: वो तो लग ही रहा है।
4: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
5: अच्छा?
4: हाँ।
0: अरण्यक चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
8: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
0: किधर गिरी होगी?
8: राजकुमार वो उधर दूर उस तरफ।
5: ओ राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए, अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
4: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
5: अच्छा तो फिर आओ।
8: हाय राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
5: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
8: हमारी लाडो लजा रही हैं।
5: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
4: आगे कुछ मत बोलो।
5: लो चुप हो गया।
4: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
5: ये लो।
0: आह चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
1: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
0: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
1: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष की समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो?
4: आई!
5: क्या हुआ?
4: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
5: अच्छा
4: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
5: अरे रुको, तो मेरे सखा उनसे कुछ कह

0: रहे हैं।
1: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
2: प्रणाम राजकुमार।
1: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
2: कुछ कहा आपने?
1: नहीं तो।
2: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
1: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए, अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
2: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
1: क्या मैं जान सकता हूँ कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
2: देव, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हट था। उसे निकाह था।
1: क्या?
2: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा, वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्ञी भी।
1: चंद्रहासिनी,
2: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
1: अवश्य राजकुमारी।
2: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
1: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
2: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
1: वो कैसे राजकुमारी?
2: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, तीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
1: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
2: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु
1: किंतु क्या?
2: यही कि पुरुष मधुर हृदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
1: यह तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहां चले गए।
2: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदयहार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
1: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदयहार तुम ग्रहण करो।
2: ये क्या, आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूँ?

0: अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
1: क्यों?
0: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार।
1: अंगूठी?

0: भुवन मोहिनी, इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति आज अपना 5 दिवसीय प्रदेश दौरा समाप्त कर श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के अटूट विश्वास से प्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्य प्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:01 अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुराधा पिंड से। श्रोताओं, आजकल डिजिटल युग है, तो स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल क्यों ना हो। हम सभी को जरूरत पड़ने पर डिजिटल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से घर बैठे या आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के माध्यम से घर बैठे वीडियो कॉल या फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल से डॉक्टर के पर्चे को अपलोड कर घर बैठे दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन ऐप्स, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर हमारे रोज़ाना चले गए कदमों, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हमारी नींद का पूरा रिकॉर्ड हमें देती है, जिसके ज़रिए हम वक्त रहते समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का मीटर ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा भी हम सभी के लिए उपलब्ध है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA, या इसे आभा नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हम बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान को रखते हैं, उसी तरह आपके स्वास्थ्य से संबंधी सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे डिजिटल हेल्थ लॉकर में रहते हैं, यानी कि पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है। तो आपको अस्पतालों के पर्चों को लेकर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको 14 अंकीय पहचान की ज़रूरत है, जिसे देश भर में किसी भी अस्पताल में बताने पर आपको आपके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ये खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर बना सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप पर आभा डाउनलोड करके भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये खाता न सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है, बल्कि कागज पत्री रखने की ज़रूरत को भी कम करता है। लेकिन हम आपके आनंद में कोई कमी आने नहीं देंगे। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: श्रोताओं, बारिश की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। खास तौर पे देखा जाता है कि कभी सर्दी, जुखाम, फिर कभी कह रहे हैं कि पेट दुख रहा है। तो इन सब मौसमी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जायसवाल जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं और होम्योपैथिक चिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है।
1: होम्योपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं कि केवल सर्दी, जुखाम या मीठी गोलियां हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े से हमारे मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइजेशन की कोई भी समस्या, किसी भी स्किन की समस्या, महिलाओं की समस्या, सभी पर बहुत ही अच्छा जो है इसका योगदान भी है और उपचार भी है।
0: ज्यादातर अभिभावक बच्चों को कोई समस्या होते ही अन्य किसी पद्धति में चले जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए सुरक्षित है?
1: बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को लेकर के गार्जियन उनके प्रति प्रेम रहता है, अपने आप को ये मान लेता है कि नहीं, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो हम इस बात में कहेंगे कि होम्योपैथी का जो उपयोग है, जो दवाइयों का जो चुनाव किया जाता है, जो आपके लक्षण के आधार पर उसका चुनाव होता है, सर्दी, खांसी, निमोनिया, जैसे बारिश के समय में क्या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी, जुखाम, गले में

0: प्रॉब्लम आ जाता है या उसको बहुत तेजी से फीवर आ जाता है, निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को उसको होम्योपैथी प्रथम दृष्टया में लोगों को दिखाना चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई बचती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हम वहाँ पर किसी भी विषय में ये बात नहीं कहता हूँ कि हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ज़्यादा भारी दवाइयों को एक बार में बच्चों को देने से पहले होम्योपैथी का जरूर सहारा लेना चाहिए।
1: सामान्य तौर पर बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और होम्योपैथी इसमें कितनी कारगर रहती है?
0: सामान्य तरह से अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हर मौसमी बीमारियां होती हैं, बारिश का मौसम में संक्रमण ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय बारिश के समय में बहुत सारे हमारे जीवाणु हैं, फंगस हैं, ये हमारे गंदगी की वजह से घरों में और किसी भी तरीके से काफ़ी नमी की वजह से हमारे शरीर में उनका उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम जो है रोकथाम चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा हमारी जरूरी है। जरूरी किस तरीके से है कि बारिश का मौसम है, बचें, शाम के समय भीगते हुए आए और पंखे के नीचे सो गए, सर्दी हो जाता है, सर अगर ठंडा हुआ, सर अगर हमारा किसी तरीके से नमी बनी रही तो वो हमें गले को वायरल को लेकर के बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगना हम मना नहीं करते, भीगना चाहिए, लेकिन बच्चों के शरीर से जो पानी रहता है उसको तावल से अच्छे से साफ करके, सोते समय हल्का सा कुनकुना सरसों का तेल है उसको बॉडी के हर पार्ट में उसको थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। तो रोकथाम में कुछ होम्योपैथी की जैसे दवाइयां शुरुआती दौर में गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की आशंका लग रही है या बुखार आने का मुझे लग रहा है, शरीर में टूटन आ रहा है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ दो दवाइयों का बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम है, जैसे आर्सेनिक है और मर्कसॉल, इनको दवाइयों को जरूर दे देना चाहिए, एक ही डोज में या दो डोज में ही उसका असर आ जाता है।
1: जी, जैसे आपने बताया कि बरसात में बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बच्चों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैंने अभी जो दवा का जिक्र किया मैंने आर्सेनिक, आर्सेनिक एक अपने में इतनी बड़ी दवा है कि अगर हमने उसको सुबह खाली पेट 3 दिन दवा दे दिया तो बारिश के मौसम में जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खाने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है, बारिश में भीग गए तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उसमें बात आती है तो आर्सेनिक अपने में पूरी दवाई है
1: जी।
0: 3 डोज उसको सुबह खाली पेट 3 दिन ले लें, लेकिन अगर उस प्रतिरोधक दवाइयों के बाद किसी भी तरीके से अगर वो भारी समस्या में या उसका जो रोग है वो बढ़ रहा है तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले।
1: तो ये कितने समय तक लेना चाहिए और कितने समय तक लेने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए?
0: आर्सेनिक दवाइयाँ सिंगल डोज है 200 पावर में 3 दिन लेना चाहिए, खाली पेट सुबह 3 दिन, 2 से 3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर ले, घर के सभी सदस्य ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
1: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह के उपाय हो सकते हैं जिनसे बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाया जा सके।
0: ये बात करूंगा मैं मोबाइल के बारे में, बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, चक्कर आ रहा है, कोई भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, अभिभावक से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मोबाइल में क्या चीजें उनके लिए जरूरी है उन पे निगरानी रखें और कितना समय दें। सुबह का नाश्ता सबसे पहली ड्यूटी है कि सुबह उठाना, उसको योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसे बनेगा।
1: होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में क्या खाने पीने का भी कोई परहेज रहता है?
0: बीमारियां किस तरीके की है, जैसे अब डाइजेशन की कोई बीमारियां है, दस्त का पेशेंट आ गए तो हम दस्त में थोड़ी कहेंगे कि कुछ चीज खाना है, तो दस्त के हिसाब से जो मूंग की खिचड़ी खाने को डॉक्टर बोलता है उसके पीछे रीजन होता है, मूंग और चावल जो पका करके जब बनाते हैं तो उसमें एक श्लेष्म बनता है जिससे हमारे आंतों को पचाने में सुपाच्य होता है और वो दस्त को रोकता भी है। तो जो बीमारियां जिस तरीके की रहती हैं उसमें रोकथाम खाने का जरूर रहता है, हर बीमारियों में नहीं रहता है। होम्योपैथी में ये बात जरूर करते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो ये नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये समाज में एक होम्योपैथी के प्रति एक धारणा है कि यार बड़ा वहाँ पर परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये अपने में इतनी मजबूत है कि इसमें वो छोटे छोटे खानों की चीज़ों से वो उसकी बीमारियों की जो क्षमता है ठीक करने की वो कमज़ोर नहीं पड़ती है, बशर्ते हमें ये समझना जरूर होता है कि कौन सी बीमारियों को किसमें हमें रोकथाम करना है।
1: अब हम बात

0: करते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर रहते हैं, काफी समय तक खेलते कूदते हैं, तो उन बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। तो उसे बचाने के लिए होम्योपैथी में क्या कोई कारगर उपाय है?
1: सबसे पहले तो हम जितनी बीमारियां हैं अपनी सुरक्षा खुद से करें। जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण ज्यादा रहता है, उसका कारण रहता है कि नमी, ह्यूमिडिटी बॉडी में मौसम में होने के नाते कहीं भी हर जगहों पर नमी की वजह से फंगस का बढ़ने का जो सिरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी कुछ काम करें तो अपना साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि साफ जितना रखेंगे संक्रमण उतना कम होगा। बड़े बच्चे हैं, अपनी बातों को डॉक्टर के सामने बता सकते, छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े बच्चे किसी कुछ बड़े बीमारी में कुछ रहते हैं तो छुपा ले जाते हैं, और वो छुपाने के साथ में बताते सोचते हैं कि गार्जियन को बताऊंगा तो वो डांटेंगे मुझे। तो जो बच्चे हैं इसलिए गार्जियन से बताते नहीं, तो बताना जरूर चाहिए, नहीं वो गंभीर समस्याओं का संक्रमण बारिश के समय में होता है। वायरल इन्फेक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है, एक निमोनिया, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, धीरे से भीग गया, बारिश में आए, सो गए, पंखे की हवा लगा, लंग्स पूरी तरीके से कंजेस्ट हो गए। हम यहाँ पर सचेत करूंगा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब रही बात होम्योपैथी की, बच्चों में अगर कुछ इसी तरीके से है तो हम सब नर्सिंग मेडिसिन बोलते हैं, सेम्बुगस नाइग्रा 30 potency में 3 बार। बड़े बच्चे हैं, कभी भी सर्दी जुखाम बुखार खांसी के साथ में अगर किसी भी समस्या का रोग अगर उत्पन्न हो रहा है तो फेरम फॉर 6x, इसको जरूर याद कर लें। मैं इस दवा के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस में और अपने 15 सालों का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेरम फॉर 6x अगर मैंने बच्चों को दे दिया, चाहे छोटे बच्चों को दे दिया चाहे बड़े बच्चों, बिल्कुल भी आप इस दवाई को दे दीजिए, पूरे कफ को जो कंजेस्ट है पूरे धीरे धीरे बाहर कर देगा, आपकी खाने की क्षमता, आपकी जो बुखार है, जो कंजेशन है, धीरे धीरे वो अपने आप में नॉर्मल कर देगा।
0: हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत छोटे जो नवजात बच्चे रहते हैं, तो जब हम उन्हें दवाई दी जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
1: देखिए, नवजात बच्चे, हम होम्योपैथी में 10 दिन का बच्चा हुआ और दवाई दीजिए, अब उसमें दवाइयाँ देना उचित है, बिल्कुल दिया जाता है, तो उसकी माँ साथ में रहे, तो क्योंकि वो माँ ही सब कुछ सिम्टम उसका बता सकता कि मेरा बच्चा किस तरीके का हरकत करता है
0: जी,
1: दस्त कितनी बार किया, दस्त का कलर क्या था, खांसी किया तो किस तरीके से उसके सिम्टम आए कि सांस फूल रही थी, शरीर नीला पड़ गया, डिस्निया की कंडीशन हो जाती, निमोनिया आ गया। हमारा डॉक्टर का ऑब्जर्व, मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको समझा, देखा, सब कुछ समझ के उसको दवाइयाँ दिया, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता अपने मुँह से। छोटे बच्चों के लिए देर नहीं करना चाहिए, दस्त कई बार हो रहे हैं, एक बार हुआ तो ठीक है, बुखार तेज आ गया, या कभी कभी बुखार इंसेफ्लाइटिस एक कंडीशन होती है कि मस्तिष्क ज्वर, ये कभी अगर बच्चों को छोटे समय पर अगर वो बीमारियां हुआ, बुखार आया, अगर सही समय पर उसकी दवाइयां नहीं मिली तो बच्चों को देखते देखते अचानक उसको इतनी गंभीर रूप में ताप आ जाएगा उसके शरीर में कि वो मुंह से बड़बड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है, और गार्जियन उसमें बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो। तो कुछ समस्याएं होती हैं, उसको अभिभावक को जब डॉक्टर के पास जाए, जो लक्षण आपने जो समझा है अपनी भाषा में डॉक्टर को, अच्छी भाषा में आप बताइए, डॉक्टर खुद समझेगा और आपका वो लक्षण बताना कितना गंभीर है और कितना कारगर डॉक्टर के लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात को छुपाना नहीं चाहिए।
0: ये बताइएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और सामान्य जीवन शैली में अगर हम सुधार करते हैं तो किस तरह से हमें क्या बेहतर परिणाम उसके मिल सकते हैं?
1: देखिए, हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी की रही बात, हमारे लिए हर बीमारियां अपने आप में बड़ी ही सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है, और इसको बहुत ही गहन चिकित्सा के रूप में गहन करके इसकी दवाइयों का सिलेक्शन होता है। अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों का एक बार जरूर चुनाव करें, क्योंकि ये किसी भी रोग को दबाती नहीं है, ये उनके लक्षणों के आधार पर, उसके जो सिम्टम आप बताते हैं उनके आधार पर चिकित्सक जो है चिकित्सा करता है। जैसे आप कहेंगे टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, बीमारियों के नाम से ये होम्योपैथी नहीं जानी चाहिए, लक्षणों के आधार पर जानी जाती है।
0: जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम, उसका नाम है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम इसमें बात करेंगे कॉन्टैक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं, कॉन्टैक्ट लेस हेल्थ टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे संपर्क रहित स्वास्थ्य तकनीक कह सकते हैं।

इसमें शरीर को छुए बिना या किसी तार या उपकरण को लगाए बिना भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन को मापा जा सकता है। इसके लिए मरीज के गद्दे के नीचे पतले सेंसर लगाए जाते हैं जो शरीर की बारीक हलचल पर भी नज़र रखते हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैनिंग कैमरा आपके चेहरे के रंग या त्वचा में होने वाले बदलाव से तनाव के स्तर या दिल की धड़कन को भी माप सकता है। ये टचलेस तकनीक जल्द ही सब जगह उपलब्ध होगी और आशा है इसमें सभी लोग आनंदित होंगे।

0: बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्ची चीजें खमकाएं, पत्ता गोभी और सलाद जैसी कच्ची सब्जियों को खाने से बचें और अच्छे से उबाल कर या पका कर खाएं, और साथ ही पानी भी बहुत सारा पीते रहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको स्वस्थ रखेगा। तो बस अब अनुराधा पेंडसे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली ताल।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं अनुसूचित

इसी गंगा गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं राम स्वरूप साकेत से चंद गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं अहमद फराज की इस गज़ल से।

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
4: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
3: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
4: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास।
3: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
4: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
3: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
4: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: आओ मिलकर करें प्रयास,
4: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ, और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दो बज चुके हैं, आप सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आ रहा है ऐ दिल है मुश्किल फिल्म से। अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं शेख खुशहाल और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है। प्रीतम ने, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

0: ये गीत आपने सुना एजेंट विनोद फिल्म से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। अमिताभ भट्टाचार्य इस गीत को लिखने वाले थे और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंचकर श्री मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुर्गन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी MPLAD के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत UCC ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। अगर मालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2 बजने जा रहे हैं। आप दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और

0: संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121

0: पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में इस गीत को शब्द दिए थे आनंद, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित एवं उनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता था। करूला मुरादाबाद से अगली चिट्ठी आई है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान की, और इसी गीत को सुनना चाहते थे सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी।

अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में बोल अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम ब्लैकमेल। ख्वाहिशमंद हमारे दोस्त उनके नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस गीत को सुनवाने के लिए हमारे सभी दोस्तों ने चिट्ठी लिखी थी। ये हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिगारपुर से सालिक पुजारी, अमरावती महाराष्ट्र सरोज चौक से ये ख़त आया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुज्तबा खान और राऊ भाई शहीद भाई, गांधीबाग आकोला से रमेश काटनकर और वैशाली काटनकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। अब हम सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, जिनके नाम हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजौरिया। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है पटेल नगर मालोट पंजाब से, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है तेजाब फिल्म से लिया गया। अमित कुमार और साथियों ने इसे अपनी आवाज़ें दी है। धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, बोल जावेद अख्तर के।

ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ। अप्पू राजा फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। प्रेम धवन ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है इलैयाराजा की। इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, घंटा घर चौक, खंडवा से। प्रभाकर जोंघले, आरती जोंघले ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। और कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश करता हैं हमारे ये सभी दोस्त, सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी भी इंदौर से ही आई है, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से। अनिल कवचाले, नेहा फर्नीस, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा और स्मिता की। इन्होंने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को। गीतकार है कुमार फरहान सईद ने धुन तैयार की है, आवाज़ है श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्टार्मर का कहना है कि वे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। कार्यक्रम आजकल कल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। ग्राम सभा का प्रसारण समय रहेगा 7:21 और सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30। और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे

दस बजे संगीत गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5 बजे से सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। आप सुनिए लोक संगीत। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। कलाकार हैं अनुसुईया बोरेलिया, इनसे आप सुन सकते हैं कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस मीरा भजन से।

और इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं रामस्वरूप साकेत की गाई हुई कुछ गज़लें। कार्यक्रम का आगाज़ इस गज़ल से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान है।

और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आप सुनिए चित्रपट संगीत।

जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

0: इसी नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इसके साथ ही उनका मध्य प्रदेश का 5 दिवसीय दौरा पूरा हुआ। राष्ट्रपति सुबह 10:30 पर वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुर्गन आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे, वहीं कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और नागद्वारी यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त तक नागपंचमी तक आयोजित की जाएंगी। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। 4 बज चुके हैं। आप सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना।

उर्दू कार्यक्रम आईना का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। अब सुनिए संग्रहालय से, इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं भुवन मोहिनी। आज इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है, आइए सुनते हैं।

पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्न सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।

0: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
1: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
0: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
1: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
0: धन्यवाद महाराज।
1: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी,
0: आज्ञा महाराज।
1: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार व्रजेश्वर और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
0: आदेश शिरोधारी है महाराज।
2: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
3: भुवन मोहिनी।
2: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
3: कौन आ रहा है मित्र?
2: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
3: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
2: वो देखिए।
3: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
1: प्रणाम राजकुमार विजयश्रवा। निश्चित ही आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
3: हमें स्वीकार है महाराज।
1: आभारी हूँ युवराज। भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
2: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
3: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
1: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
3: धन्यवाद महाराज।
4: सारथ।
5: हाँ रण्यक।
4: कुछ समझ रहे हो?
5: अवश्य रण्यक। महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
4: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
5: वो कैसे?
4: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
5: ये तुमने ठीक कहा।
4: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
6: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजयश्रवा महोत्सव स्थल पर पधार कर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत हैं राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज, आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
1: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगतियों और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
0: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
0: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।
0: ऐसा कैसे हो सकता है।

0: कितनी विडंबना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूं।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजय श्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एकरस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही है। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपनी जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
2: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
2: नृत्य रोक दिया जाए।
3: बहुत सुंदर, अति सुंदर, संपन्न हुआ। माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
1: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
5: अर्ण्यक?
2: हाँ मित्र,
5: तुम मेरे साथ ही रहना।
2: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
5: साथ ही हैं?
2: हाँ।
5: कहाँ?
2: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
1: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथी से?
4: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
2: क्या सोच रहे हैं मित्र?
5: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
2: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
4: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका

0: पीछा कर रहे हैं, तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
1: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहां कैसे पहुंच गई?
0: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
2: अरे मित्र उत्तर दीजिए ना। मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
3: तात्पर्य?
2: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी, जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
3: अरे मित्र ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
0: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
3: अरे देवी जी आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
2: क्या कह रहे हो मित्र?
3: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
1: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
0: अरे अरे अनर्थ हो गया, सारथी रथ रोको।
4: क्या हुआ?
3: अरे मित्र राजकुमारी का रथ रुक गया, और ये लो। अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं, अब आप नीचे उतरिए।
1: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
0: आपकी मणिमाला खो गई।
1: क्या? अरे अभी तो मैंने अपने गले से उतार कर तुझे रखने के लिए दिया था, तूने पेटी में क्यों नहीं रखा था? कहीं मार्ग में तो नहीं गिरा दिया?
0: कह नहीं सकती।
1: तो फिर रथ वापस लौटाओ और पीछे जाकर खोज करो।
2: अरण्यक? हाँ क्या हुआ?
3: आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूँ।
2: चलो मैं भी चलता हूँ।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: यही देखिए ना, यहीं पे तो यहीं पे हो सकती है।
3: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहाँ पर?
0: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
3: अरे किससे खो गई?
0: मुझसे।
3: ये तो होना ही था।
0: क्या मतलब?
3: अरे जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
0: अरे मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
3: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूँ अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूँ। और देवी जी आप कौन हैं?
0: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूँ।
3: वो तो लग ही रहा है।
0: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूँ।
3: अच्छा?
0: हाँ।
2: अरण्यक चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
0: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
2: किधर गिरी होगी?
0: राजकुमार वो उधर दूर उस तरफ।
3: ओ राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए, अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
0: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
3: अच्छा तो फिर आओ।
0: हाय राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
3: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।
0: हमारी लाडो लजा रही हैं।
3: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
0: आगे कुछ मत बोलो।
3: लो चुप हो गया।
0: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
3: ये लो।
2: आह चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
1: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी नारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
2: चंद्रहासिनी तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मध को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
1: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूं, परंतु मैं जानती हूं कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष के समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो?
0: आई!
3: क्या हुआ?
0: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
3: अच्छा,
0: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
3: अरे रुको तो, मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
2: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
1: प्रणाम राजकुमार।
2: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
1: कुछ कहा आपने?
2: नहीं तो।
1: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
2: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
1: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
2: क्या मैं जान सकता हूँ कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
1: देव, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हठ था। उसे निकाह था।
2: क्या?
1: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्ञी भी।
2: चंद्रहासिनी,
1: क्या भाभी सम्राट मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
2: अवश्य राजकुमारी।
1: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
2: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
1: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
2: वो कैसे राजकुमारी?
1: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत के वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, तीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
2: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
1: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु
2: किंतु क्या?
1: यही कि पुरुष मधुप्रदय न जाने कितने बार ऐसे मधुर मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
2: ये तो अपवाद मात्र है।

0: राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहां चले गए।
1: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदय हार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है, और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
0: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदय हार तुम ग्रहण करो।
1: ये क्या, आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूं? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
0: क्यों,
1: ये मेरी ओर से प्रेमोपहार।
0: अंगूठी?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का चौथा भाग। यह आकाशवाणी भोपाल है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

नमस्कार, मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 5 बजने वाले हैं, अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे और 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन हुआ। प्रदेश के संस्कृति विभाग के सहयोग से बनी ये फिल्म मुरैना जिले के मितावली स्थित मंदिर पर आधारित है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त वंशिका श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ नए विचार, कुछ नई जानकारियां और बेहतरीन फिल्मी गीतों का शानदार संगम। तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रीन ट्रांसपोर्ट के बारे में, जानेंगे कुछ खास बातें जनरेटिव एआई के बारे में और सुनेंगे कुछ मधुर फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म कॉकटेल से। स्वर थे नीरज श्रीधर, कविता सेठे, गीतकार इरशाद कमल और संगीतकार प्रीतम। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि हम पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उधार लेते हैं। इसलिए आज यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। इसी सोच के साथ आज का विषय है ग्रीन ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसा परिवहन जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। आज हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी वाहन का उपयोग करते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारणों में से एक हैं। बढ़ता धुआं केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि हमारी सेहत पर भी बुरा असर डालता है। सांस से जुड़ी बीमारियां, बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऐसे में ग्रीन ट्रांसपोर्ट एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और सार्वजनिक परिवहन जैसे साधन शामिल हैं। इनका उपयोग करने से ईंधन की बचत होती है, प्रदूषण कम होता है और शहरों में ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों ग्रीन ट्रांसपोर्ट केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसकी शुरुआत हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी कर सकते हैं। यदि कार्यालय, कॉलेज या बाजार घर के पास हो तो पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है। यदि संभव हो तो कार की बजाय बस या मेट्रो का इस्तेमाल करें। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। आज दुनिया के कई देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत भी इस दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और चार्जिंग स्टेशन भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के बहुत कुछ देती है। अब हमारी बारी है कि हम भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ बढ़ते हैं अपने अगले खूबसूरत फिल्मी गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म चलते चलते से। स्वर थे अभिजीत और अलका याग्निक के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द आपने कई बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और इसी का एक आधुनिक रूप है जनरेटिव AI, जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनरेटिव AI ऐसी तकनीक है जो केवल जानकारी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई सामग्री भी तैयार कर सकती है। यह लेख लिख सकती है, चित्र बना सकती है, संगीत तैयार कर सकती है, वीडियो बनाने में मदद कर सकती है और कई तरह के रचनात्मक कार्यों को आसान बना सकती है। दोस्तों इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा से। स्वर थे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल के, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जनरेटिव एआई की। आज छात्र पढ़ाई में कठिन विषयों को समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक बेहतर नोट्स और अध्ययन सामग्री की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स, लेखक, डिजाइनर्स और व्यवसायी भी अपने अपने क्षेत्र में इस तकनीक की मदद से समय बचा रहे हैं और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जनरेटिव एआई से मिलने वाली हर जानकारी को आंख बंद करके सही मान लेना उचित नहीं है। कई बार यह गलत या अधूरी जानकारी भी दे सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांचना चाहिए। युवाओं के लिए यह तकनीक एक बड़ा अवसर भी है। जो लोग नई तकनीकों को सीखते हैं, वे भविष्य के रोजगार और नए करियर विकल्पों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आने वाले समय में एआई से जुड़े कौशल कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई हमारी मदद कर सकता है, हमारी जगह नहीं ले सकता। इंसान की कल्पना शक्ति, नैतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आज भी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तकनीक को अपना सहायक बनाइए, उसका पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ कि तकनीक हमारे जीवन को और बेहतर बनाएगी, आइए सुनते हैं आज का अगला शानदार फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म आजा नटले से। स्वर हैं राहत फतेह अली खान के, गीतकार जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान। दोस्तों अब समय हो गया है आज की रोजगार सूचना का। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा SSC CGL 2026 की अधिसूचना 12,256 पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट SSCG पर जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 22 जून 2026 है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बार बार देखो से। स्वर थे अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कर के। गीतकार अमरिक सिंह कुमार और संगीतकार जसलीन रॉय। और दोस्तों आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त है आपसे विदा लेने का। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दीजिए आपकी रेडियो होस्ट वंशिका श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाज़ें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का, और आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब और फारिकी

अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादा फरीदी और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में, लागा चुनरी में दाग फिल्म से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोहित्रा ने।

सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, स्वानंद किरकिरे और प्रणव विश्वास की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म लागा चुनरी में दाग का बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने और बोल थी स्वानंद किरकिरे के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नहीं पुरानी. Best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है. केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा. केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की. 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए. उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है. अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे. और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा. ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा. आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम की 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज़ है मुकेश की और योगेश का लिखा हुआ ये गीत है। धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आनंद आश्रम, आइए सुनते इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है श्यामल मित्रा ने।

नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है योग। केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा का है। आप मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सदियों पहले भारत की पावन भूमि से उपजा योग आज वैश्विक चेतना का सबसे बड़ा संवाहक बन चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, तब वह केवल एक पद्धति का सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करना था। आज योग धर्म, जाति, भूगोल और सीमाओं के बंधनों को तोड़कर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो रहा है। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में हमें योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम या कुछ आसनों तक सीमित रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। योग एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ ही राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का अदृश्य इंजन भी है। एक अर्थशास्त्री या वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से जब मैं योग को देखता हूं तो मुझे इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद, GDP और नागरिकों की क्रय शक्ति को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम दिखाई देता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी बीमारी पर अपनी जेब से होने वाला खर्च परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। योग मुख्य रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रणाली है। यदि देश का नागरिक हर दिन सिर्फ 30 मिनट योग को देता है तो वह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रहता है। स्वस्थ नागरिक का सीधा अर्थ है अस्पतालों और दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी। यही बची हुई पूंजी परिवारों की बचत बनती है जो आगे चलकर देश के वित्तीय चक्र को गति देती है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी इस युवा आबादी का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब यह युवा कार्यबल न केवल डिग्रीधारी हो बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान हो। कॉरपोरेट जगत से लेकर सरकारी विभागों तक बर्नआउट और मानसिक तनाव कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। योग और प्राणायाम व्यक्ति की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब कार्यबल की कार्यक्षमता बढ़ती है तो उसका सीधा सकारात्मक असर उद्योगों के उत्पादन और अंततः देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। योग भारत के युवाओं को भीतर से सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार योग को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर इसे अपनी विकास नीतियों का हिस्सा बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां तैयार की हैं। हमारे अमरकंटक, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे सांस्कृतिक केंद्र आज न केवल आध्यात्म बल्कि योग और आयुर्वेद के बड़े हब के रूप में उभर रहे हैं। हमने स्कूली शिक्षा में खेल और योग को प्राथमिकता दी है ताकि आने वाली पीढ़ी बचपन से ही इस जीवन शैली को अपनाए। इसके अलावा हमारे प्रदेश का आयुष विभाग लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग शिविरों के माध्यम से जन जन को निरोगी बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज योग ने दुनिया भर में एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जिसे वेलनेस इकोनॉमी कहा जा सकता है। योग मैट और परिधानों से लेकर डिजिटल योग एप्लीकेशन और अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस रिट्रीट का बाजार अरबों डॉलर का हो चुका है। भारत इस वैश्विक योग अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। हमारे देश के युवा आज दुनिया भर में योग विद्या के ट्रेनर और थेरेपिस्ट के रूप में रोजगार पा रहे हैं। यह लोकल टू ग्लोबल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। योग हमें जोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति से

व्यक्ति को समाज से और नागरिक को राष्ट्र से। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में विकसित भारत के उस सपने को पूरा करने का मार्ग है, जहां नागरिक केवल भौतिक रूप से समृद्ध न हो बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो आइए हम सब योग को साल में सिर्फ एक दिन का उत्सव न मानकर अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब एक एक नागरिक स्वस्थ और संकल्पवान होगा तभी एक समर्थ सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। आजकल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। विषय था योग केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिक के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहले हम बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: अब हम बात करेंगे उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हितग्राही एकता टकरानी बताती हैं कि
2: मेरा नाम एकता टकरानी है। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितकारी हूं और जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। से मैंने अपना इलाज, जो भी जांचें की, उनको सही समय पर कराया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले मिश्री लाल चौधरी बताते हैं,
3: मुझे जनधन योजना में खाता खुलवाने का प्रथम लाभ मिला। उस योजना से मेरा अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सीधा मेरे खाते में आता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है जबलपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट।
4: संस्कारधानी का ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
5: मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम यहां भारत की उस महान परंपरा का

0: उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। यह थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है। योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं, साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
2: हमारी दूसरी खबर है इंदौर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में अनेक स्थान पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनिंद्र कुमार दुबे।
3: इंदौर जिला मुख्यालय पर केंद्रीय जनजाति कार्य विभाग राज्य मंत्री दुर्गादास उइके के मुख्य आतिथ्य में विश्व योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक और अनुशासित रूप से समृद्ध बनाता है। आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शांता स्वामी भार्गव ने आकाशवाणी को बताया।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत इंदौर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम बास्केटबॉल स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी, कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले में विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और जो इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम था, इसमें 500 से अधिक लोग सहभागी बने। विद्यालय में जो योग करने वाले बच्चे थे उनका ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया, जिसकी संख्या 1200 के
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने योग को स्वस्थ जीवन का गुरु मंत्र बताया।
5: योग भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में आत्मसात किया है। योग करने से शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। योग जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन प्रातः 30 मिनट योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य बीमार ही न हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि देश का पैसा अनावश्यक रूप से अस्पताल बनाने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, दवाइयां खरीदने में खर्च होने से बचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वह बीमार न हो।
3: इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में गोपुर चौराहे पर 10,000 से ज्यादा साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन में इंदौर की 70 से अधिक योग संस्थाएं, खेल संगठन, 150 से अधिक सामाजिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभरी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
6: प्रधानमंत्री जनधन योजना और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खंडवा जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश तायकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 6,95,213 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2,02,236 हितग्राही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,02,338 हितग्राही तथा अटल पेंशन योजना के तहत 82,599 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। LDM श्री तायकर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जनधन खातों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुँच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा उससे संबंध बीमा और पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
2: हमारी अगली खबर खरगोन से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में

0: करीब 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
1: खरगोन जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1 लाख से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में मुख्य कार्यक्रम खरगोन की अनाज मंडी में आयोजित हुआ, जहां प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग ने पिछले वर्षों में वैश्विक पहचान बनाई है और आज दुनिया भर के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वस्थ, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया और निरोगी भारत के संकल्प को भी दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार।
2: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये योग का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में हमारे खरगोन जिले में लगभग हर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ये आयोजन हुआ योग का, और उसमें कम से कम 1 लाख से भी ऊपर जनता ने, बच्चों ने, सबने मिलकर के इसमें भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके संकल्प को लेकर के आज पूरे विश्व में योग हो रहा है। इस अवसर पर मैं आज जिन लोगों ने भी इसमें योग में भाग लिया सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वो स्वस्थ रहे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं मंदसौर जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और छोटे रोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना से लाभान्वित व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट हैं। पेश है मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे स्वरोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना है। मंदसौर जिले में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। जिले में 4000 हितग्राहियों के लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 5000 से अधिक व्यापारियों को इस योजना का लाभ दिया है। इनमें लगभग 4000 व्यापारियों को 15 से 20 हजार रूपए तक का ऋण और करीब 1000 व्यापारियों को 50 हजार रूपए तक का ऋण प्रदान किया गया है। फल फ्रूट व्यापारी मोहन लाल ने बताया कि
4: मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से पहले 10 हजार रूपए का लोन लिया था, फिर उसको पूरा करने के बाद मुझे 25 हजार का लोन मिला, फिर उसके बाद मुझे 50 हजार का लोन मिला। ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वनिधि योजना है, हम ठेले वालों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और हमें बहुत इस योजना से हमें बहुत फायदा मिला है।
3: वहीं पीएम स्वनिधि शाखा प्रबंधक अजय शर्मा ने बताया कि
5: हमारे द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का संचालन कोरोना काल से लगातार किया जा रहा है। इसके दौरान हम वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान हमारे द्वारा अधिक से अधिक योजना में जो मुख्य रूप से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, उसकी हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। उसी की वजह से अधिक संख्या में हितग्राही हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे द्वारा डिजिटल इंडिया का जो QR कोड होता है, ताकि हितग्राही डिजिटल पेमेंट कर सके, वो भी हमारे द्वारा किए जा रहे।
3: आर्थिक सहायता से छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने और आय में वृद्धि करने का अवसर मिल रहा है। योजना का लाभ पा चुके व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है नीमच जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
6: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर आधारित होगा। कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, योग संस्थाओं, NCC, NSS, पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से दिनेश प्रजापति।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है।

0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांधिकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनिएगा वृद्धावस्था में योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर विशेषज्ञों एवं योगाचार्यों से बातचीत पर ओबी आधारित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी। 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर सुनेगा संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन राग होगा यमन। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा रमेश इंदुबासु की गाए भजन और गीत। 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में आप सुनेगा ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और सुभाष जाटव का काव्य पाठ। हर रोज की तरह जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन ताल होगा एक ताल। और इसी प्रोग्राम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा तबले पर 3 ताल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेगा धारावाहिक भुवन मोहिनी का 5वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:33 पर रात्रि 8:15 पर और 10 बजे आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, सतत कृषि विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका। जानकारी देंगी डॉक्टर मीना यादव। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में, और रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आईना में आप सुनेगा गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि कल शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: दीदी नौकरी लग गई।
6: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
5: हाँ दी, नया मोबाइल।
6: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
6: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
5: पर दीप,
6: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
6: अच्छा।
7: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से 1-to-1 चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में है, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है।

0: सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक संहिता UCC की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग चार सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण सुझाव लिए। बैठक में देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और CPM के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक ई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएँ प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉ बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। ये फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की ITI प्रभात पट्टनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोलबेड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NHRC दिल्ली द्वारा NQAS प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में PM जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लम्बिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अब अपना कार्यक्रम चौपाल और उसके साथ साथ फरमाइशी लोकगीतों का आनंद उठाएंगे कार्यक्रम लोकमाधुरी में। तो चलते हैं चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनवे वाले हमारे सवई भैया हरण को, भौजी बिन्ना हरण को आरती की राम राम। और भैया हरों कैसे हाल चाल है आप सबके? देखो तो भैया गर्मी कितनी हो रही है ना। और हम जाना था कि आप और अच्छा गर्मी से बहुत ही परेशान हुई हो, तो भैया हम तो यही कहें कि देखो गर्मी तो पड़ रही है लेकिन अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखो भी ज़रूरी है। तो भैया हम तो यही कहें कि देखो ऐसे जब निकलो दोपहरिया में तो अपने सिर को ढांक के निकलो और कहूँ से आओ जाओ, है ना। जैसे धूप में घाम में से अपन घर आते हैं या कहूँ जा रहे हैं तो एकदम से अपन का ठंडा पानी नहीं पीना है ना। तनक सुस्ता लो और अपना पानी पियो, खाली पेट पानी नहीं पियो, है ना। कछु खा लो फिर पानी पियो। तो ऐसे अपने शरीर को भैया ख्याल रखे तभी हम जा गर्मी से अपनों बचाव कर पाएँ। हम जाना था कि गर्मी इतनी पड़ रही है, इतने पसीना निकलता है शरीर में, का है कि पानी की कमी से हो जाता है। तो भैया पानी खूब पियत रहें और संगे संगे भैया देखो नींबू के पानी के शरीर में कमी ना हो। जी के लाने देखो नींबू की शिकंजी है बाय पिए, या मठा है, छाछ है, ईखों पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। तो जैसे अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान दें हैं तो अपने शरीर को ख्याल रख पाएँ और शरीर जब अच्छा रहे तो देखो भैया मन भी अच्छा रहे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो भैया देखो जून को आखिरी हफ्ता चल रहा है, अब देखो का है कि अब तक तो कहते ना कि मानसून से पहले की वर्षा वो हो जाती थी, लेकिन जब समय तो देखो वर्षा भी नहीं हो पा रही है। तो भैया देखो ऊपर बादलन पे अपन और टकटकी लगाए देखते रहते हैं, मन जो ही कहता है कि कब आ हो कब बरस हो, बड़ी चिंता हो रही है कि कैसे कब बोनी हुई है।

अब तो लग रहा हो कि बेउर भी धरो धरो खराब ना हो जाए, है ना। लेकिन हमारे कई भैया अरे का है बोनी की तैयारी में लगी हुई हैं, तो हम तो यही कहें कि देखो जब तक 4-5 इंच पानी ना गिर जाए तब तक बोनी ना करें तो अच्छा रहे। काहे से देखो सूखे खेत में अगर अपन औरन ने बेउर डाल दो, बीज डाल दे, तो का हुई है कि देखो वे खराब हो जाए हैं और नुकसान हुए सो अलग, फिर इतेक महंगाई में बीज भी तो सस्ते नहीं मिलते ही, है ना। तो तनक पानी लेट हो जाए तो लंबे दिनन वाली फसलें छोड़ के कम दिना वाली फसलें बोएं, जैसे अपनो मूंग है, उड़द है, तिल है, ईखों बो सकते हैं। जी मैं कहे पानी भी कम लगे और वो जल्दी पक के तैयार भी हो जाए। और अगर पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था है तो भैया पलेवा कर दो, खेत की गहरी जुताई करके पाटा लगा दो, जिससे थोड़ी बहुत जो नमी खेतन में है वो भाप बन के ना उड़ पाए। और एक ज़रूरी बात भैया आपसे और कहें कि अपनी फसल को बीमा जरूर ही करा लो। काहे से देखो मौसम को कछु भी भरोसा नहीं होते, है ना। अब भैया कछु मान लो होनी अनहोनी हो गई तो तनक बहुत जो नुकसान की भरपाई है वो तो हो जाए बीमा से, और अगर बदरा बरस गए तो फिर का कहने हैं, फिर तो सब कछु ठीक है। तो भैया वैसे ही हम औरन को बड़ी आस होते हैं अपने खेत की माटी से, है ना, कि देखो अच्छी फसल जे अपने खेत की माटी अपन खा अच्छी फसल दे है। लेकिन तनक जो तो बताओ कि जब हम अच्छी फसल की चाहना तो रखते हैं लेकिन अपने खेत की माटी की जाँच करवाओते कि नहीं। अब ऐसी सोच लो भैया रे कि जब अपन और बीमार पड़ते हैं तो अपन और क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। और डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने खून की जांच कराते हैं ताकि ये बात को पतो पार ले कि शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन से तत्वों की कमी है। और जब जांच की रिपोर्ट आ जाते भैया तभी डॉक्टर हमें सही दवा देते और तभी हम और स्वस्थ रहते। तो कहवे को मतलब भैया जो ही है कि ऐसो ही हाल अपने खेत की माटी को भी है। अगर हमारे खेत भी देखो जीतो जाग तो एक शरीर की नाई है, है ना, और जो धरती है वो अपनी मताई है। अब का है कि देखो सालन से हमारे अंधा धुंध यूरिया डीएपी और कीटनाशक डारत आ रहे बिना सोचे समझे, है ना। लेकिन जो नहीं सोचता ही कि खेत की माटी को जाकी जरूरत है भी कि नहीं है, और जई कारण से दिनों दिन खेत की माटी के जो उपजाऊपन है वो कम होते जा रहे हैं, बाकी ताकत में कमी आ जा रही है। तो भैया जई परेशानी को दूर करने के लाने शासन ने भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत करी है। और भैया अब भूमि स्वास्थ्य कार्ड का है तो भैया एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा कार्ड है जी में तुम्हारे खेत की माटी की पूरी कुंडली लिखी होते है। और जब आप अपने खेत की माटी की जांच कराओ तो जय प्रयोगशाला वाले जांच वाले भैया जो हैं जय में सब जरूरी जो 12 तत्व होते उनकी जानकारी लिख देते कि कौन तत्व कितो है, और जो भी बता देते कि कौन से तत्व की कमी है जी में, कौन से पोषक तत्व डाल रहे हैं जिसे माटी की गुणवत्ता में कमी ना आए। और फिर जब माटी खां ऊकी जरूरत के हिसाब से खुराक अपन जब दे देते हैं मिल जाते हैं तो भैया फसल भी अच्छी होते और दाना भी अच्छा पड़ते। तो भैया हरो अच्छी पैदावार हुई है तो इका फायदा की खो मिले अपन औरन को ही तो ना। तो हमें भूमि स्वास्थ्य कार्ड को भैया देखो जरूर बनवाने। और जब भूमि स्वास्थ्य कार्ड है भैया जैसे देखो हम जैविक खेती को भी सही दिशा दे सकते हैं। काहे से जब माटी की कमी को पता अपन को पड़ जाते हैं तो बाय हिसाब से अपन गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है और राइजोबियम या एजेक्टोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक डाल के अपनी माटी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो भैया अब बात आत है कि जब कार्ड को कैसे बनवाओ जाए, तो सीधा सरल तरीका है भैया कि सबसे पहले अपने खेत से, है ना, 4-5 अलग अलग जगह से भैया अंग्रेजी के वी आकार को गड्ढा खोद लें और खोद के माटी निकाल लें और फिर सब माटी को मिला के सुखा के एक साफ थैली में भर के अपने पास के कृषि विभाग की माटी परीक्षण प्रयोगशाला में दे दें। और भैया जब कछु दिन बाद जब जांच की रिपोर्ट आ जाते तो बाकी हिसाब से अपन भूमि स्वास्थ्य कार्ड बन जाते। तो भैया यारो अच्छी फसल यदि हमें चाहने हैं, पैदावार बढ़ाने हैं, लागत को कम करने हैं तो हमें भूमि स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझना हुई है। भैया यारो सही खाद सही मात्रा में पोषक तत्व डारवे से ना केवल अपन का अच्छी फसल मिलत है बल्कि अपने आगे आवे वाली जो पीढ़ी है उनके लाने भी अपनी जो धरती माता सुरक्षित रहते। तो भैया हरो धरती माता अपनी सुरक्षित रहे, हम सभी जीवित रहें, अपनो जीवन ऐसो ही हंसी खुशी से चलत रहे। जी के लाने भैया एक जरूरी बात और है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसी क्या जरूरी बात है बिन्ना, तो देखो आपको बता दें कि सबसे जरूरी अपने लाने का है भैया, सबसे जरूरी है अपने लाने जल, है ना, जीवन। और कहते ना कि जल ही जीवन है, तो जल ना केवल अपने और अनखों बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधा फसलों खेत खलिहान सभी के लाने बड़ो काम को है। और सांची कहे तो भैया देखो बरसात शुरू हो बारी है लेकिन कछु पक्को नहीं है कि

बारिश हुई है भी कि नहीं। तो जे पानी की अनियमितता के चलते भैया फसलन को कितो नुकसान उठानो पड़ते, कहूँ देखो सूखा हो जाते और कहूँ पानी की जब कमी हो जाते तो भैया थाड़ी फसलें सूख जाते। तो ऐसे में शासन की एक जनहितैषी योजना चलाई गई है, वो कौन वरदान से कम नहीं है भैया, और जेको नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। भैया सीधो साधो मंत्र है कि हर खेत को पानी मिले, और कोनो भी खेत जो हैं पानी की कमी से उनकी जो फसलें हैं वो खराब ना होए, अच्छी रहे। और जी के लाने भैया देखो खेतों में तालाब को निर्माण करवे के लाने भैया, कुआ खोदवे के लाने शासन जो है जय योजना के तहत आर्थिक सहायता भी देते। और भैया देखो टपक सिंचाई है, फब्बारा सिंचाई, वो भी जय योजना को बड़ो ही जरूरी हिस्सा है। और भैया ई के तहत अपन और आधुनिक तकनीकों को उपयोग में ला सकते हैं, उसे भैया का है कि देखो अपन को इसे लाभ भी अच्छो मिलते है। अब भैया देखो लाभ की बात करें तो देखो टपक सिंचाई से का लाभ मिलता है, तो भैया आपको बता दें कि टपक सिंचाई जो होते हैं वो अपने जब उसमें से बूंद बूंद जब पानी गिरते है तो देखो सीधे वो जड़न में पहुँचते हैं और पानी की वजह से बर्बादी भी नहीं होती। और दूसरे भैया देखो फब्बारा सिंचाई, फब्बारा सिंचाई में कहा है कि भैया जो फब्बारा की तरह जब पानी फसलों पे गिरते है तो आपको बताते हैं कि तो जा तकनीक को अपनावे से भैया 40 से 50% पानी की बर्बादी रुकत है और फसलन में भी बढ़ोतरी होते। तो भैया हम पास के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विस्तार का अधिकारी के कार्यालय में जाके संपर्क करें, और भैया देखो ऑनलाइन आवेदन करके जी को अपन लाभ ले सकते। तो भैया देखो अपने पुरखा कहता थे ना कि पानी डारे घींच नहीं तो सब कछु कीच। तो भैया जो पानी है तो किसानी है, और किसानी है तो भैया हमारा जीवन है, तो कतई अपन का ढील नहीं देने हैं। तो आज ही अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से मिलें और पूरी जानकारी लेके अपने खेतों में टपक या फब्बारा सिंचाई विधि को अपनाएं और पानी की भैया एक एक बूंद बचाएं। काहे से ये जल जो है बहुत ही कीमती है, कहते हैं ना कि जल है तो कल है, तो भैया पानी की एक एक बूंद बचाएं, लागत घटाएं और मुनाफा बढ़ाएं। तो भैया देखो बातचीत अपनी होते ही रहे, लेकिन कहा है कि आज सोमवार है तो आप सभी को कार्यक्रम लोकमाधुरी जो आपकी पसंद के आपकी फरमाइश के लोकगीत हम आपको सुनवाए हैं तो वो लेके आए हैं। तो चलो अब हम अपने कार्यक्रम लोकमाधुरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन सुनाते हैं रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में ये लोकगीत, और जब गीत की फरमाइश जो है वो अपन खां भेजी है ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। तो भैया चलो हम सब आपकी पसंद का ये लोकगीत सुनाते हैं जी, खो स्वर से सजाओ है रतनलाल कुशवाहा ने।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं लक्ष्मी त्रिपाठी के स्वर में ये गीत, लोकगीत या गीत की फरमाइश जो है वो हम सबको भेजी है अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट्स बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारती, अमिता भारती, श्रीमती ललिता बाई भारती। तो चलिए आपकी पसंद का लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जीखों स्वर से सजाओ है लक्ष्मी त्रिपाठी ने।

तो भैया रो देखो, अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं बद्री प्रसाद कुडेरिया के स्वर में जी लोकगीत। और गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और साथ ही ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक यादव, उर्मिला यादव और चांदनी यादव। तो आइए आपकी पसंद का लोकगीत हम और आप मिलके सुनते हैं, जिसको स्वर से सजाओ है बद्री प्रसाद कुडेरिया ने।

और आइए अब हम आपको सुनवावत हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत। जा गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम बिडौरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, रामवीर सिंह गुर्जर, इंद्रपाल सिंह गुर्जर, शिशुपाल सिंह गुर्जर, यशपाल गुर्जर, जयपाल गुर्जर, मनोज गुर्जर और उनके सभी साथियों ने। तो चलो हम और आप मिलकर सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत।

तो देखो, अबे हम और अन्य चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत सुना, और आइए अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं बाबूलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। जहाँ गीत की फरमाइश है वो हमें लिख भेजी है अटरिया मोहल्ला बाजार गया लोट छतरपुर बुंदेलखंड से। बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, छोटा भांजा, बड़ा भांजा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, आयुषी, अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज, भारत भारती, काजल, करण और बाबू और समस्त बुंदेलखंड निवासी। तो चलिए आपको हम सुनवावे जा रहे हैं बाबूलाल कुशवाहा और साथियों के सर में ये नर्मदा गीत।

तो भैया देखो, अबे हम और अन्य जो गीत सुनो बाबूलाल कुशवाहा के स्वर में, नर्मदा मैया को की जामे उन्होंने, नर्मदा मैया के बारे में उन्होंने बताओ। और भैया देखो, अब जावे की बेरा हो रही है, तो अब हम आपसे आज्ञा ले हैं, आपसे विदा ले हैं, लेकिन चलते चलते आपसे यही कहें हैं कि देखो, आप अपनी पसंद के कौनों लोकगीत सुनवो चाहो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या नंबर पे फरमाइश भेज सकते हो। हमारा नंबर है, वैसे तो आप सभी जानो तो, लेकिन फिर भी हम आपको बताए दे रहे हैं, 9425702768। एक बार फिर से बता दें, 9425702768। तो भैया अब हम आज्ञा दो सभी को, आरती की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक MSME की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये 3 जहाज हैं जिनमें करीब 75-80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 MSME लघु उद्योग इसमें, इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज़्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरीज जो अंदर लगी हुई हैं, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी 3 जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 MSME जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
2: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
4: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत।

0: मजबूत होगा।
1: कॉमेडो जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है।
2: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे। बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को, उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो, उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रेडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो, तो ये रेडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रेडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है, वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा, ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
1: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
2: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है, उनका काम जैसे कि नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है। मतलब उसको नीचे, जो समुद्र के नीचे है, उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है। जैसे सड़क ऊंच नीच होती है, वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है, जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहाँ उसको सफिशिएंट डेप्थ नहीं है, जहाँ गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो हैं वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट्स पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब 4 सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है। जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज़्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज़्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है, उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
1: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रय की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
2: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वाटर क्राफ्ट। शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं। उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया हैं उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुंदर के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है। हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है। तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कंफर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
1: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
2: जी, आपने बिल्कुल सही बोला। ये अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुन्दर के अंदर, वो EEZ बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं। उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्दर की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हों और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से। क्योंकि ये जो है ऑल दो EEZ बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा। तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के, लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पे हक नहीं जमा पाएगा। तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए दे के बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको, इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
1: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, शुक्रिया।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर KD जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयदेव के संगीत से सजा हुआ गीत बोल हैं जानिसाद अख्तर के और फिल्म का नाम प्रेम पर्वत, आवाज लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत इंदिवर का लिखा हुआ, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, आवाजें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम प्रेम प्रतिज्ञा।

हीरा पन्ना, आइए सुनते इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के पोल हैं और संगीत आर डी बर्मन का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ

0: शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर वेम्बू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादीप खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि

0: क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है।

0: जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-1717 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार।
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा

0: प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में, जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
2: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा, और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है, या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
1: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है, तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं, जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की, तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है, 10 से 20,000, तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
2: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
1: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
2: हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
3: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
2: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है, सर इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकता है, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
2: पात्रता क्या होनी चाहिए?
4: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताए कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
2: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
1: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
2: हाँ,
1: तो वो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था।

0: और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी
2: कर दिया, कर दिया।
1: सवाल
2: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी।
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है
1: जी? पुनेंद्र जी,
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से उस एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी।
3: हेलो जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे मालूम चलेगा कि उनका PF जो कटता है या PF का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके EPFO के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू OTP से आप रीसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो UAN से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे आप कई लोगों के शंकाएं हैं, कई

0: जो होते हैं, जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
1: अभी तो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
0: ठीक, उड़ीसा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
0: जी
3: नमस्ते
2: जी। मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है, उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
0: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
0: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉयी वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉयी को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉयी अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयी को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयी के अगेंस्ट है, एम्प्लॉयी है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
0: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
0: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
1: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
0: सैलरी का पूछा उन्होंने,
1: सैलरी। हाँ, तो

0: इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
2: विन-विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार,
3: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर
2: जी, पूछे
1: जी मोहन जी,
3: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं,
2: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है
1: जी। अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश में जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमएस हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी

0: पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
1: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे, जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
0: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
0: सवाल पूछे,
2: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
0: कौन कौन से
1: इसमें
0: सेक्टर?
1: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
0: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 144-80-144-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
0: जी हाँ, 1-4-4-8-0 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगे कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
1: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
0: जी।
1: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
0: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फैज़ अनवर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये पैरा।

भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत। और जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड बानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद है हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं नीरज का लिखा हुआ गीत, तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने, फिल्म का नाम है गैम्बलर। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं रिंगने छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

मैंने प्यार किया, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में। देव कोहली का गीत है और संगीत राम लक्ष्मण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहानकर, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रमिता और आकार हाइस बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश श्वेता सुमित और कुमारी धोनी। एक और पत्र हमारे हाथ में है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा का। तो ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, तो सुनते हैं इस गीत को।

नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। और एक और पत्र हमारे हाथ में है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिमा, शिवानी शिमाली। और ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें पत्र मिला है सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। वर्मा मलिक का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग है यमन। विलंबित ख्याल एक ताल में और मध्य लय में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग था यमन। तबले पर संगत की थी ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने और हारमोनियम पर थे सलीम अल्लाह वाले। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: The Prime Minister said, the country has witnessed and endured cycles of growth and destruction. He added that India carries the memory chip of ages within its consciousness. Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next